0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये आशी है दृष्टि लेना भगवान से समर्पित वालों की, ये आशी है।
3: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय start।

तीनों लोगों में
Yes.

0: Samedzaj. I kak rode. Acha rode. Hal chal mein nahi aaye. Iske upar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਾ ਮੁਫਤ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ます。

0: Esta ist die Swamane. Umanaki ikagerta. Kishakti. Sage frishta manane.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसा कोई परिवर्तन करके देखा जैसे बाप दादा के।

0: से आप झगड़ा लोगों को शांतमय बना के एक सैंपल देगा, ऐसा ग्रुप लाना बना के ऐसा ग्रुप यहाँ लाना, देखो कितना युद्ध है बहुत है। अच्छे अच्छे और सब तरफ की है, फॉरेनर्स भी है। अच्छा अभी कोई आवाज फैला, थोड़ा थोड़ा सेवा तो कर रही हो, खाली तो नहीं बैठे हो, लेकिन कोई ऐसे जैसे पाप फाट डालती है ना आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पाप लगाओ, एटम पाप नहीं आत्म पाप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक हो बहुत, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो

Son.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चिल्लाना सहन नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दा।

si se va a

fartarse.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Come on. मेरे और चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: जैसे ये कलफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
3: बाबा याद कर देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा से नंबर आगे लेना, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं। सब कर सकते, बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देगा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को Fala.

0: He said he did me. Beach me ye. Apna chat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पकाओ।

0: पर प्रभावित कर दे तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में
2: सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत
1: बलिष्ठ नजर से देखते। अच्छा अच्छा, बहुत आई है टीचर्स में, फॉरेन की टीचर्स भी है, उठी है। अच्छा, मेहनत, हिम्मत और मेहनत में मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो मैं कौन, मैं फ्रिस्ता यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहते हैं। कोई भी बात आए सो पीती अभी

head.

push me such. Jerry. Essay.

मुश्क रहता चेहरा अच्छा लगेगा। तो आज से सभी बच्चे सिर्फ सो नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश

Shh.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे

0: cordele दिल में बोझ नहीं रखो, कहीं बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता, और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो, लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है, वो हाथ उठाओ, हिम्मत रखे बच्चे। हाथ शरीर से बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े की अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला मन अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी करते हुए इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरक के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पद में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके मोल्ड कर सके इसी शरीर भी इसी रखते है ना तो मोड़ जाते है जहाँ भी मोड़ने और टाइट होगा तो मोड़ नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश

Sunscreen.

अनेक स्वरूप।

Yeah.

Legends.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है, तो है स्वयं बच्चों के याद के पाप रह ही नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ। सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे? बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ रह सकती है। अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले हो जाएंगे।

0: की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात रही ठहरांग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है, समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बच्चों के लिए बाप सदा सर जो कहा गया सो रासर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हंसो

Skill.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना, बाप दादा देता है और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं,

0: आपको मुबारक देगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sunday to Sunday.

No.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल Okay.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अच्छा।

कुछ ना कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे। इसलिए बाप दादा अगले वर्ष जो आया कि आया

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी किस बात की

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मध्य सोगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेडियो इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार।

for Fauna. Shuffle.

समान बनने का और लक्षण रहे हुए।

मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे है वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे

0: जवाब आप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते है ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाऊं। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच स्थान कौन से संगम, बारा की सुई टाप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा
1: So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबको राज भी करना है तो और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: पेंसिल के बीच में साइड सीन्स, इसमें रुकना अर्थात सोचना प्रभाव में आना तो कान है, तो आंखें, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों

fishes.

सब पूछते हैं ना, नए वर्ष में क्या होगा? तो बाप दादा का विशेष

Lager.

0: tú aquí.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो प्रवरों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है, लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

しく。

अच्छा।

loco, pap, tata. Pachuca. Esa vez ayer. Let's go.

しよう。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कोई भी गरम करो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, किसको सी

मानव का वर्तमान समय से

ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी।

0: छुपाओ के प्रेत, शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि और दृष्टि
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो, सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें। तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधै वृद्धि होती जाए। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ, हर कार्य में मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी हिम्मत दिलाओ। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्यों क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sabi ko, Bob, Sabi.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इंसान Yes.

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, फिर से उठा।

उन्हें भी हाथ उठाए। उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठी है चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं, मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी को मस्त

Ganz

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ नहीं, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय स्व के परिवर्तन में जय शिवा के सफलता। फर्श पे ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो के सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से नशे से रुआने नशे से आप माने नशा नहीं रुआने नशे से उड़ते चलो।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Title

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे हो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज पे ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज पे ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मन आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते। तो आप सब भी मन की परेशानी जाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, अबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उनकी वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है क्या होना है ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एस्लम कर आपका है। डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है, ना विनाश नहीं, परिवर्तन होना। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

sensitive, but

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Freaking.

सर एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बच्चा बना दिया। अभी अनुभव करते हो बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक चमकती।

0: जीवन कितने खुशनुमा बन जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

तो टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो समय पड़ा।

por Sharad Carrier. Watch Jane.

Idziety.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, न पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, इशारा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचती है तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mars.

Ekkert. Awesome.

Still, but nothing.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगी, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। Why you money?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सभी एक साथ

ऐसे शरीर ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूँ, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

呼吸。

Buddy.

इस कभी कभी शब्द को

0: रतन बनाने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अश्वगंधा अच्छा। खांसी के लिए है
2: अच्छा। दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी ये पक्का हो गया।
1: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले इनका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: अच्छा, सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेफ्टापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Chopin.

bitch. Sameka Kazana. Swear.

fue.

hace falta amor, hermano. Quiero que haga que hace falta.

समय सफलता

Awesome.

0: 접시대 위시드람사다 라지사다 도나이 위시시
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
3: एक को छोटे बनाना सीखो और छोटे

गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी आतंक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करती रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते, और शोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मा परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआएं का खाता बहुत जमा करो, अपील की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो ब्रह्मात्माओं के लिए अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा, बैलेंस कम कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने को फिनिश करो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Spain y Materna. हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा के छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी, खुश दिमाग और खुश किस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो तो अभी भी अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है।

0: ki çalan or çerisi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिकर बच्चे,
2: बेफिकर
1: फिक्र का था। कारण क्या है बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है ये फिक्र क्यों है?
1: दिल बड़ी है। बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
3: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है।
1: तो दिल बड़ी कैसे हुई है? बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारत रूप से हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

0: object med Boswell i slie. Gå i gå fast nummer valen gå. Bap dada ne. Apne taraf se 25 marks parai. Jo pehla nummer hai. Aur jo dusra nummer hai. Usko 15 marks parai. Ye extra lift bap dada ne apne taraf se di. To final paper mein आपकी ये मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट अभी से रखो और अगर अभी भी एक मास एक्यूरेट अकाउंट रखेंगे नंबर वन वाला तो बाप दादा श्रीमत नहीं कर सकते। श्रीमद न मानने से मार्क्स तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे और टीवी नहीं अपने ही दिल के टीवी में बाप दादा दिखाएंगे तो उसमें इस श्रीमत की मार्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Grayson.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा सबको लगा रहा
2: मेरे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने से कम छे मास में अपने को जीवन मुक्त Sigh.

कोई पास ही।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे, कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी बन बड़ी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य संस्कार पाठ बजा रहे। बाकी जो भी सेवादारी सेवा करते हैं वो भी दिल से कर रहे हैं,
2: नहीं चला। दादी आप

0: 喂，
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल बेकारी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय बिना बिना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया। लेकिन चतुर छाया रही ना कोई नुकसान हुआ, दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब चोर करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया सामान से, भर गया। सब सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। हम दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां। कितने मजे से सब्जियां

娘万里的弟弟，阿拉阿布罗那弟弟。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: छोड़ता है तो तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह बढ़ा हुआ है, अर्थात उत्सव। उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्साह, इसलिए पक्का रखना रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Y banana.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अवित हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चल रहा है, तो हम ऐसा कर और आप आकार और निराकार, अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें, उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, है डॉक्टर, उल्टी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, सामने उल्टी करेंगे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सिपा।

0: Automatic. गरम में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब पर तक्यता होंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मौके से नहीं परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? समय की दाता बनने का प्रारंभ होता है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दादा बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है। स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि को लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साखी बनो। और सदा अपने कोई भी हल चलो पहुंचे।

0: con Ébano. Salz Quesada. Cabebe.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

और वो

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक की नहीं होगी तो किस पे जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने जाओ उतना कर सकते। वैसे भी जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाए। इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: शरद कर रही है। जमा का पुरशरत आप ही कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jumping.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो करी लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
2: सॉरी जमा की परसेंट।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगी, ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखे पहले पांव तो रखो, एक पांव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष पे हर समय शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, ऐसे हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी कोई माया का संकल्प पिया वे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आते है ना विमान। जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ, भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे Yeah.

सिंपल रूप में सिंपल बन के रहे। See.
भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते।

0: con casa y yo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: listening. समझत
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह

कुछ ना कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है, खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का सने ले जाए। See?

Síganme, beleza. Sayog Himat Vela.

नमस्ते, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना। See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

कुछ ना कुछ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द

सभी बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस

How do you mean?

Sarva Samad Kasame Pret Same Anbo Kartiro.

सत्यों की तरफ मन

Samantha Avergaré. Το σάρβα Samantoka. Σοκλή.

Some.

ます。

five.

Satti Banal.

видел.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और सने है पानी, सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: अपने चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो एडवांस मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: करते हो, वकालत करते हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सदाई छत्र छा।

Snakey Soccer.

ஆசீசனே. சனை பண்ணாதே.

0: Vai, bona neva, liot. Kyo. Kisane. Me praptya. Sapasht anbhoti. Arja.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कृपया के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली प्रति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो। बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनों को भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सनई सहयोगी नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई पाप का सुनई परिवार सदै सुतै बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार सब बढ़ाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का, बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का ऐसा सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते, फिर वारिस भी बन सकते। ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छी अच्छी है लिस्ट।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आवाज शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा। ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है और है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का पाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सोच

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती, जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने बोले।

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब बाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन

0: तो अच्छा नहीं है। सब हम चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजनी बन के चल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में बेहद का फेरा। मधुबन निवासी को सदा आलसी बनना, अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो स्थूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है, समाधोवन को भी
2: जाएंगे तो बहुत,
1: और कितना स्वमान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
2: मतलब
1: मधुबन वाला है, मधुबन वाला है तो इतना अपना स्वमान सदा मार्च नहीं, मार्च।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते है बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता,

Carla, no hay bola.

Interessante.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: करना चाहिए। महसूस भी किया। ये न करके ये करना चाहिए था। समझ में आ जाता है पीछे, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है। एक बार आपने रियलाइज कर लिया, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित हो Chitel. Soñai andar nairoko, andar agnese que es capo para por yate. Ora agar que ahogan, agar que ahogan, fatengana, dos sachi. Thank you. जितना जो लेने चाहिए बाप दादा के भंडारी में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा का जी हाजर, बाबा का लो दादा है ना, दादा भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं कर, चतुराई बहुत करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते हैं। साफ दिल सच्ची दिल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।